0: मैं जब 10 साल का था तो मैंने 9 o'clock न्यूज पे सुना कि पाकिस्तान तारीख के एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है।
1: अबू!
2: मैं फिर 20 साल का हुआ, मैंने फिर 9 o'clock न्यूज पे सुना कि पाकिस्तान तारीख के एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है।

0: मुझे फिक्र ये नहीं कि ये मुल्क कैसे चलेगा, मुझे फिक्र ये कहीं ऐसे ही ना चलता रहे।
1: यार मुल्क में बड़ी टेंशन हो गई है। कोई नहीं सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।

0: हाँ ये गाना भैया, ये तो मेरा भी बहुत बहुत फेवरेट गाना है, मजा आ गया सुनने में, बहुत अच्छा।
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
2: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
4: Ji sajno, tusi suniya eh song, welcome song. Kaisa lag gaya tuhanu? Sanu te jehda lagya si tuhanu dass hi ditta. Hun tuhanu eh kaisa lagya? Eh tusi dassoge, ede utte apni rai deoge. ਕਮੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਓ।

0: हम सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही
3: एक पल की लापरवाही

0: global experience and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search Southamptonshire College Group.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: Shall we do some adverts and then come back?
3: Yeah, right.
2: So
3: cut me off there, didn't I?

0: Awaaz FM, local radio. Communities making waves, turning the tide on isolation.
1: एक पल की लापरवाही।
2: अंकल, मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था। मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था। मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: कितना अच्छा है कि माँ हमारे लिए हर पल मौजूद है। शुक्रिया अदा करें मॉम का।
1: थैंक यू मॉम।
2: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
3: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर। लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में। स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ।
4: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
5: Awaz FM is supporting local radio.
6: Local radio.
5: Communities making waves, turning the tide on isolation.

0: आई एम सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: Barra Drums, from Kingston to the Nile. Join me, Tap, for a show where you can listen to the vibes of Africa, blended with music of the Caribbean, combined with news, views, and opinions, bringing Africa and the Caribbean culture alive. Every Sunday at 1 p.m., only on Awaz 99.9.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
0: In the meantime, we need Simon's assistant to put the sliders down to shut me up. So I'm going to...

0: From Woolston to West End, from Millbrook to Marchwood, this is Hours FM.
1: एक पल की लापरवाही।
2: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: Our new jingle could just be us saying we need a new jingle.
3: We needed a jingle, yeah. It's better than that.

0: आवाज, आपका रेडियो, आपके शहर में आवाज एफएम।
1: मैं राज राम जी बोलता हूँ भैया, अली भैया, मेरी एक फरमाइश है, अगर हो सके तो बजा देना मेरे लिए, तुम रूठ के मत जाना। फिल्म है फागुन, रफी और आशा भोसले की आवाज में। थैंक यू।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: From the flight path at Southampton Airport to the ocean terminal at Southampton Docks, you're listening to Hours FM.
4: हुई नहीं सुबह और रोशनी हुई जरूर है, सोती जब दुनिया, यहां जागने का दस्तूर है। यहां चलता नहीं है कोई, बस भाग रहे हैं सारे। और जो रुक गया उसका जीना फिजूल है।
5: ए, अवांदे, चल चल, चल।

पटरी धड़कन इसकी, चाय की टपरी महफिल इसकी, रौनक की देखो यहाँ भरमार है, लम्हों में यहाँ सालों की रफ्तार।

साला ये शहर भी अजीब है, जन्नत से दूर पर मन्नत के करीब है, मांगता मेहनत और चलता सिर्फ नसीब है। बिल्डिंग तो सब बहुत सॉलिड है यहाँ,

0: ऐसा कौन है जिसको मिली दगा नहीं?
1: मुंबई मुंबई
0: भूख से नहीं है मारा मारी और खुदगर्जी और लाचारी, पहले कौन आगे जाए, तेरी या मेरी गाड़ी? मुंबई।

0: Hop on, rewind, repeat. One Wild Ride, Retro Rickshaw, every Sunday between 2 and 4 p.m.
1: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज़ एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज़ सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज़ रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज़ आवाज़ एफएम के साथ
3: You're listening to Awaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
4: This is Natalie DeLuccio and keep listening to Awaz FM.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: Awaaz FM is supporting local radio.
3: Local radio.
2: Communities making waves, turning the tide on isolation.

0: Hours FM, live across Southampton on 99.8 FM.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
3: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
0: From Wolston to West End, from Milnbrook to Marchwood, this is Hours FM.

0: हम सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: Bonjour, c'est Abbas Hassan et vous écoutez bien Avaz FM.

0: I am a big fan, long time listener, first time caller.
1: You certainly are. You certainly
2: are.
3: अंकल मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: हम सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: Our new jingle could just be us saying we need a new jingle.
3: We need a new jingle, yeah. It's better than that.

0: मैडम सॉरी बच्चों मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: Awaaz FM, supporting local radio. Communities making waves, turning the tide on isolation.

साउथैम्पटन एक खूबसूरत तारीखी शहर, समंदर की नीली लहरों के किनारे ये आबाद शहर अपने अंदर कितने राज छुपाए हुए हैं। मेरी जवानी का शहर जिसकी गोद में मैंने कितने सुनहरे दिन गुजारे हैं, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। इसी शहर के दिल के अंदर हमारा एक कम्युनिटी रेडियो आवाज़ ने जन्म लिया है और इसके अंदर भी कितनी आवाज़ें पोशीदा हैं, उनमें एक प्रोग्राम शेरो नगमा भी है। ज़िंदगी के दो बड़े साथी, हमारा शेरो नगमा हर जुमेरात को दिन के 2 बजे शुरू होता है। मेरा नाम मकबूल अहमद सईद है और मेरे बादशाह आसिफ अली साहब मेरे नगमागर मेरे साथ होंगे। हमारे दरबार के दरवाज़े सब के लिए खुले हैं, ज़रूर इसमें शामिल हों, वक्त किसी का दोस्त नहीं। ये सांसों की जादूगरी न जाने कब थम जाए, वक्त के साथ चलें, वक्त की तज़ीम करें। आखिर में 2 शेर, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू, जाती बहार में खिलते फूल के दिल में दर्द था यह खुशबू, ये वो हंसता रोगी जाने जिसने ज़ख्म छुपाए हैं। शम्मे बज़्मे तरब बुझ जाए फिर अपने भी पराए हैं, दिन डूबे तो छुप जाते हैं, साए आखिर साए हैं।

0: From Merrioak to Mayfield, from Bitton to Bassett, this is Hours
1: FM.
2: Uncle,
1: मुझे
2: तो बड़ी ओके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी ओके डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: Get your favourite song on the radio. Contact us now.
1: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
4: Your number one radio station. Play more music. We are your number one favorite station. Playing more music.
5: Oh, yeah.
4: We are your number one radio station. We only play the hits.
6: Ours FM.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: You showed you the message again, and you can't see if you can't do my birthday, you will get a surprise.

0: लोग कहते हैं कि सपने कभी पूरे नहीं होते, पर मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि मैं दुनिया की आवाज नहीं सुनता हूँ, सुनता हूँ तो सिर्फ अपने दिल की आवाज।
1: सुनो दिल की आवाज।
2: That many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
3: Radio, the medium that's now large.
4: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@oursfm.co.uk.
5: एक पल की लापरवाही।
6: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी होके डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: Big fan, long time listener, first time caller.
4: You certainly are.

0: From the heart of Southampton, reaching out to the community, this is Ours FM
1: 99.8. Uncle, मुझे बड़ी हो फिर डॉक्टर बनना था। मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: Our new jingle could just be us saying we need a new jingle.
1: We need a new jingle, yeah. Better than that.
2: At Southamptonshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search Southamptonshire College Group.
3: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
4: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
5: Get your favourite song on the radio. Contact us now.

0: लेकिन सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: Your voice in your community. This is 99.8 Hours FM.

0: Southampton's Community Radio. Hours FM. 24 hours a day. Hours FM. Online and on air.
1: आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
2: Just because I'm a driver doesn't mean I can see you.
3: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
4: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
5: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
6: Just because it seems clear doesn't mean you shouldn't stop.
7: Just because you are surrounded by metal doesn't mean I'm not flesh and blood.
8: Just because you're nearly home doesn't mean you are.
9: One in every five road deaths is a pedestrian. Just because you use the road doesn't mean you own it. Respect everyone's journey.
10: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry-expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
11: चलते हैं पाकिस्तान, लाइन पर हैं अजमल शोबी।
12: अस्सलाम वालेकुम।
11: वालेकुम सलाम।
12: आपको वेलकम कहता हूं मैं कराची पाकिस्तान में।
11: हां जी शुक्रिया।
12: मैं सामीन को सबसे पहले तो है कि आवाज एफएम टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा मैं कि उन्होंने अपनी काबिश को जो है वो एक इस तरह आगे पहुंचाया है कि एक लिसनर शो, एक ऐसा चैनल मिल गया सुनने के लिए कि जहां पर वो अपनी पसंद का खूबसूरत सब म्यूजिक भी सुन सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी सुन सकते हैं और बहुत सारी मालूमात उन्हें फ्राहम होंगी आवाज से। और उसके साथ साथ जो है तमाम लिसनर्स को जो इस वक्त मुझे यूके में सुन रहे हैं, तमाम लिसनर्स से को मैं मुबारकबाद दूंगा आवाज एफएम की जानिब से। मेहरबानी, तो आवाज एफएम में इतने खूबसूरत लोग यहाँ मौजूद है और मैं मुसलसल ट्रांसमिशन को सुन रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ आप सबके साथ। बहुत खूबसूरत म्यूजिक भी मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है और पाकिस्तान से भी प्रोग्राम हो रहे हैं, यूके से प्रोग्राम हो रहे हैं, तो बड़ा ऐसे अजीब बड़ा खूबसूरत है, मिला जुला सा माहौल होता है। जब कहते हैं ना कि बड़े हसीन खूबसूरत फूलों को हम यज्जा करते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा अट्रैक्टिव जो है गुलदस्ता बन जाता है, और ओके बनता है।
11: और अजमल साहब, इधर भी अपना ये जो रिसेंट ईयर्स जो गुजरे हैं ना, इनमें पाकिस्तानी और इंडियन हमारी जो अपनी कम्युनिटी है एशियन, ये काफी ज्यादा बढ़ गई है और इस चीज की जरूरत थी कि जो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म इधर मिलना चाहिए जिसमें हमारे अपनी कम्युनिटी की पहचान हो, हमारी बात हो, और उसके लिए ये बहुत अच्छा कदम जो है ये उठाया है।
12: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कदम है और इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ आवाज एफएम की टीम को।
11: थैंक यू वेरी मच।
12: बस थैंक यू वेरी मच, और मैं बस तमाम लिसनर्स को कहूंगा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें और एंजॉय करें, और उम्मीद करता हूँ कि भी हमारे आगे डीजे से प्रोग्राम करेंगे यहाँ पर, उन सबके साथ खूब इंजॉय कीजिएगा और बिल्कुल ये आपका अपना एक फैमिली चैनल होगा इंशाल्लाह ताला, और बिल्कुल आप आवाज एफएम को अपने फैमिली चैनल की तरह पाएंगे, इनके तमाम आरजेस को आप अपने एक फैमिली मेंबर्स की तरह पाएंगे, बस क्योंकि मिलने जुलने से मोहब्बत बढ़ती है और जब मोहब्बत बढ़ती है तो कहते हैं दूरियां खत्म हो जाती हैं, तो बस इसी दूरी के साथ, इसी मोहब्बत के पैगाम के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिंदगी बखैर।
11: थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय,
12: आई लव यू ऑल।

आवाज की दुनिया के दोस्तों, मैं सीमा सरगम आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ सुहाना सफर के साथ। और कहिए कैसे हैं आप? सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, जंबो एंड हेलो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। जी हाँ, आज के प्रोग्राम में मैं क्या आपके लिए लाई हूँ सुहाना सफ़र में? जी हाँ, बिल्कुल कुछ बॉलीवुड, कुछ लॉलीवुड के गीत, वो मैं आपकी खिदमत में हाजिर करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन प्रेजेंटर्स का जो सुबह से ये प्रोग्राम दे रहे हैं और इतने प्यारे प्यारे से गीत सुना रहे हैं, इतनी प्यारी प्यारी सी बातें कर रहे हैं। तो अभी आप कुछ मेरी भी बातें सुने और कुछ गीत सुने जो मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ। तो मैंने सोचा आज क्यों नहीं मेहदी हसन जी को हम लॉलीवुड यानी पाकिस्तानी फिल्मों के कुछ गीत, उनकी कुछ गज़लें आपकी नज़र करें। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी उनकी एक गज़ल जो के है रंगे, ये फिल्म का नाम था ससुराल, 1962 में बनी थी और इसको गाया था मेहदी हसन ने, जिसने मेरे दिल को दर्द दिया, और माने के ना मानिए रंगीला पे पिक्चराइज हुआ था।

जिसने मेरे दिल को दर्द दिया, बहुत ही प्यारा सा सोज में बसा हुआ ये गीत था। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके साथ एक और

0: This is Hours FM, online and on digital DAB radio from Southampton.
1: आप सीमा सरगम को सुन रहे हैं सुहाना सफर के साथ साउथहैम्पटन आवाज एफएम से. आप हमें इंटरनेट पे दुनिया भर में सुन रहे हैं और देखें डीएबी पे तो लोकल जितने भी इलाके हैं अभी सुन रहे हैं. तो आपको मैं पाकिस्तानी फिल्मों के कुछ गीत जो कि मेहदी हसन की आवाज़ में वो सुना रही हूँ. तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं. हमें कोई गम नहीं था तेरी आशिकी से पहले. ये फिल्म थी शब खैर और

एक और फिल्म की तरफ चलती हूँ, यह है गज़ल। जी हाँ, पाकिस्तानी फिल्म गज़ल और बहादुर शाह जफर की ही ये गज़ल है जो कि मेहदी हसन ने गाई थी और मेरे ख्याल में बहुत लोग इस गज़ल को बहुत शौक से गाते भी हैं और सुनते भी हैं। जी हाँ बिल्कुल, बात करनी कभी मुश्किल मुझे ऐसे तो न थी।

अभी मेहदी हसन की एक गज़ल की तरफ मैं बढ़ती हूँ, रात को बिस्कू। तो ये गज़ल भी आप इंजॉय करें, बहुत दिनों से नहीं सुनी।

ये अगला गीत मैं आपकी खिदमत में ला रही हूँ और मेरी हसन की आवाज़ में है। ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, और ये थे फिल्म में थे दर्पण जी अपनी रियल वाइफ के साथ मेरा, और बहुत ही प्यारा सा नगमा है और आज तक हम बहुत प्यार से इसको सुनते भी हैं, तो आप भी इसको एंजॉय करें।

ये है सुहाना सफ़र और मैं हूँ सीमा सरगम, और आपको मैं प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरी हसन के कुछ गीत सुना रही हूँ, कुछ गज़लें सुना रही हूँ। तो ये अगला गीत जो मैंने आपके लिए चूज़ किया है वो है बीते हुए कुछ दिन ऐसे थे, वो फिल्म का नाम था तुम ही हो महबूब मेरे, और इसमें एक्टर थे वहीद मुराद और दीबा और बहुत से, लेकिन मुझे आज भी ये सीन नज़र आते हैं, बहुत ही खूबसूरत थे। रंगीन फिल्में शुरू हो गई थी और आप इस गीत को एंजॉय करें, बीते हुए कुछ दिन ऐसे थे।

ऐसे थे तन्हाई जिन्हें बिल्कुल तन्हाई में ही ये सब यादें आती हैं। लेकिन जब तन्हाई नहीं होती तो कभी कभी कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आके रुला देते हैं। तो इसी पे हो जाए मेरी हसन की एक गज़ल, कैसे कैसे लोग हमारे दिल को जलाने आ जाते हैं। जी हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं।

ये अगला गीत मैंने एक बहुत ही प्यारी फिल्म से चूज किया है, पिया मिलन की आस। तुम्हें देखूं तुम्हारे चाहने वालों की महफिल में, बहुत ही प्यारा सा गीत है ये। और मोहम्मद अली जो कि मैं कहती हूँ बहुत हैंडसम एक्टर थे अपने ज़माने के, तो अब नहीं रहे, लेकिन उनकी तस्वीरें उनकी फिल्में आज भी हैं, तो हम उनको देखते हैं, उनकी एक्टिंग को समझते हैं, जैसे हम दिलीप कुमार की इज्जत करते हैं बिल्कुल उसी तरह की इज्जत हम मोहम्मद अली को देते हैं, पाकिस्तानी एक्टर। तो ये है तुम्हें देखूं तुम्हारे चाहने वालों की महफिल में, ये इस प्रोग्राम का आखिरी गीत है। आखिरी गीत इसलिए कह रही हूँ कि इसके बाद मैं बॉलीवुड की कुछ गीत आपको सुनाने वाली हूँ।

0: the medium that's now large.
1: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@hoursfm.co.uk.
2: Welcome back. अभी पे इस प्रोग्राम के हिस्से में आपके लिए हेमंत कुमार के कुछ गीत लाई हूँ, तो शुरू हो जाते हैं। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, और आप इस गीत को एंजॉय करें। प्यासा फिल्म थी, गुरुदत्त पे पिक्चर।

ये सुहाना सफ़र है और मैं हूँ सीमा सरगम, आवाज़ FM से मुखातिब हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, आपको गीत सुना रही हूँ, हेमंदा के बहुत प्यारे प्यारे से गीत। तो इसके साथ ही बढ़ते हैं एक और गीत की तरफ। हाउस नंबर 44 फिल्म का नाम था और देवानंद पे पिक्चराइज हुआ ये गीत है, चुप है दर्द।

इस गीत के साथ ही मैंने सोचा इसी फिल्म का हाउस नंबर 44 का एक और गीत भी आपको सुनाऊं। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए। जी हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है वैसे।

0: How do you say it? A was? Or a was?
1: आप सीमा सरकन को सुन रहे हैं सुहाना सफर के साथ आवाज एफएम साउथहैम्पटन से। तो अभी हेमंत कुमार के कुछ गीत आपको सुना रही हूँ। तो मैंने अगला गीत जो आपके लिए चूज किया है वो है जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। अनारकली फिल्म का नाम था, प्रदीप पे ये पिक्चराइज हुआ था, साथ में वीना रॉय भी थी।

जिंदगी प्यार की तो चार कड़ी होती है। तो इसी के साथ एक और नगमा जो कि फिल्म शर्ट से लिया गया है, 1954 की ये फिल्म थी, ना ये चांद होगा।

0: From Wolston to West End, from Millbrook to Marchwood, this is Hours FM.
1: मैं हूँ सीमा सरगम और आपको आज सुहाना सफर पे हेमंत कुमार के कुछ गीत सुना रही हूँ और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आ रहे होंगे। तो ये गीत, जो अगला गीत है, ये फिल्म इंस्पेक्टर से है। 1956 में ये फिल्म बनी थी और पिक्चराइज हुआ था अशोक कुमार पे। दिल छेड़ कोई ऐसा नगमा, आप इस गीत का मजा लें।

0: हो जाए दिल और कोई ऐसा,
1: दिल छेड़ कोई ऐसा नगमा। अब इसके बाद मैंने एक शोक सा नगमा लिया है, वो भी हेमंत कुमार की आवाज़ में है। जी हाँ बिल्कुल, वो ऐसे प्यारे प्यारे नगमे भी हमारे लिए छोड़ गए हैं। तो है अपना दिल तो आवारा, और देवानंद पे ये पिक्चराइज हुआ था, 16 साल फिल्म का नाम था। तो देवानंद ने फिल्मों में कमाल किया, क्योंकि हेमंत दा की आवाज़ उन्हें बहुत ही सूट की। तो ये प्यारा सा नगमा है अपना दिल तो आवारा, इंजॉय कीजिए।

0: From St Denis to St Mary's, from Portswood to Pairtree, this is Hours FM.
1: हेमंदा की आवाज में मैंने आपके लिए एक और गीत प्रस्तुत किया है, न तुम हमें

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: Get your favorite song on the radio. Contact us now.

0: I am a big fan, long-time listener, first-time caller.
1: You certainly are.
2: एक पल की लापरवाही.
3: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था. मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था. मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था.

0: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
1: एक पल की लापरवाही।
2: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था। मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था। मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: अल्लाह को।
1: कहो कि मैं सुबह के मालिक की पनाह मांगता हूँ।
0: मिन शर्री मा खलक,
1: हर चीज की बुराई से जो उसने पैदा की।
0: ओ मिन शर्री गासिकिन इज़ा वक़ब,
1: और शबे तारीख की बुराई से जब उसका अंधेरा छा जाए।
0: ओ मिन शर्री नफ़ाथात फिल उक़द,
1: और गंडों पर पढ़ पढ़ कर फूंकने वालियों की बुराई से।
0: ओ मिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद,
1: और हसद करने वाले की बुराई से जब हसद करने लगे।
0: सदकल्लाहु अज़ीम।
2: समीन, आप तलावती कुरान पाक उसका उर्दू में तर्जमा सुन रहे थे। तलावती कुरान पाक पढ़ रहे थे जनाब कारी अब्दुल बासित और तर्जमा था जनाब कारी अब्दुल समद। यह रेडियो वाज़ एफ़एम साउथ हैम्पटन आपकी खिदमत में अहमद सही मुखातब है, और ये जैसा कि मैंने बताया जी, हर फ्राइडे को आपकी खिदमत में प्रोग्राम लाता हूँ जी, 2 से लेकर 4 बजे तक। और ये अलग बात है कि मैं थोड़ा सा कभी कभार लेट भी हो जाता हूँ, जिसकी एडवांस माज़रत चाहता हूँ। बताया ऐसा क्या है कि आज टेलीफोन काम कर रहे हैं, अगर आप हाज़िर होना चाहें तो स्टूडियो का नंबर नोट फरमाइए कि 02381980072 extension 3। और अब पता तो तभी चलेगा कि जब ये टेलीफोन की घंटी खड़केगी। तो अलबत्ता आप को अगर वहाँ कामयाबी ना हो तो हमारे स्टूडियो का जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप टेक्स्ट कर सकते हैं और अपनी आवाज़ भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। वह 07784691440। आपकी खिदमत में इस वक्त मैं स्टूडियो में हाज़िर हूँ और आपकी खिदमत में अगली एक हमद शीर पेश करता हूँ। मुनव्वर हाफिज़ मुनव्वर और साथी हैं उनके, जो पेश करते हैं, कहते हैं, या अल्लाह तू बड़ा रहीम है, भला इसमें कोई शक है जी। गफूर रहीम, अल्लाह ताला के जो 99 नाम है ना, उनमें से ये भी एक नाम है। लीजिए, समाअत फरमाइए।

अल्लाह कोलू मंग बंदे अल्लाह सारे नू देंदा है। ये कलाम आप सुन रहे थे जनाब हाफी सुफियान सद्दीकी साहब की आवाज़ में। अगला कलाम आपकी खिदमत पेश करता हूँ जो अहमद रज़ा कादरी साहब पेश करते हैं, बल्कि हाफिज़ आमिद रज़ा कादरी कहते हैं, खुदा की अजमतें क्या हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने या फिर खुदा जाने।

मुझे अपने रंग में रंग दे। क्या बात है जनाब। ये कलाम पढ़ रही थी जनाब लाइबा फातिमा और उनकी सहेलियाँ। समीन आप सुन रहे हैं रेडियो वाज़ एफ एम साउथहैम्पटन। मैं हूँ अहमद साई। माजरत अगेन के टेलीफोन फिर काम नहीं कर रहा और व्हाट्सअप नंबर शायद आपने नोट नहीं किया, उस पर आपका कोई मैसेज नहीं आ रहा, या यूँ कहूँ कि आप कहीं आपका इरादा नहीं है कॉन्टैक्ट करने का। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्किल हल हो गई। ये है जी कलाम माना जात। अगला पढ़ने वाले हैं जनाब अब्दुल जब्बार और बिनते हसन। इन दोनों की आवाज़ में ये कलाम सुनते हैं, मुश्किल हमारी हल हो गई।

0: Sean Kingston, a cult classic here on Awares on the Alex Drive Time. We love to see it as we are easing more into the weekend. Here we go. Now some adverts on Awares. Here we go.
1: एक पल की लापरवाही.
2: अंकल, मुझे तो बड़ी ओके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था. मुझे बड़ी ओके डॉक्टर बनना था. मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: In Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask, which is the best way to reach them? Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
3: Radio, the medium that's now large.
4: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@oursfm.co.uk.
5: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज़ आवाज एफएम के साथ

सामीन आप सुन रहे थे आवाज थी मेहदी हसन की, तुम्हें अपना बना लूं प्यार कर लूं, कुछ ऐसी गजल थी, तमन्ना है इसका अनुमान था। आइए आप सुनते हैं अगली गजल। गजलों का ये प्रोग्राम बताता जाऊं कि आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज FM साउथहैम्पटन से, मैं हूं अहमद साईं। अगली जो गजल है उस्ताद शुजात खान की आवाज में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। कहते हैं जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं।

सामीन सुरेंद्र खान की आवाज में ये गजल आप सुन रहे थे, वो उन्हें याद करें कभी जिसने बुलाया हो कभी। अगली गजल पेश करता हूँ जी, ये गजल है तसव्वुर खानम की आवाज में। कहती है तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तुम ही प्यार तुम ही चाहत तू ही बंदगी है।

0: You're listening to Awaaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaaz is here. Awaaz FM on 99.8.
1: Sameen, welcome back after the break. Ahmed Sahib aap se mukhatib hai aur jo kahi aap Radio Awaaz FM South End sun rahe hain. Break se pehle jo aapne ghazal suni hai wo गा रही थी तसव्वुर खानम तू ही मेरी जिंदगी है। आइए अगली एक गजल पेश करता हूँ। कहते हैं मुझको मत रोको मुझे यार के घर जाने दो मिसरे परवाना हूँ जल जाने दो। ये पोइट हैं जी शायर इकबाल गिल और गाने वाले हैं शैलेंद्र सिंह।

सामीन, आपने ये गजल शौकत अली की आवाज में सुनी। दोस्त बनकर भी नहीं सांस निभाने वाला, कोई अंदाज है जालिम का जमाने वाला, इसका इनवान था। आइए अगली गजल सुनते हैं। ये गजल ओरिजिनली उस्ताद गुलाम अली साहब ने इसको पढ़ा गाया, मगर अब जो आवाज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ मैं, ये है यमुना अजिन। ये इन्होंने अपने अंदाज में इस गजल को दोहराया है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पसंद फरमाएंगे। अनुमान है दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी।

दिल में एक लहर सी उठी है अभी। समीर, ये आवाज थी यमुना अजिन की। जैसा मैं बता चुका हूँ कि ओरिजिनली ये गजल जनाब उस्ताद गुलाम अली की आवाज में थी। आइए अगली एक और आवाज आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उस्ताद शफकत अमानत अली खान की आवाज है। पेश करते हैं गजल, कहते हैं, दिल ही तो है ना संग खिश्त दर्द से बरना है क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों।

हमारी ही मोहब्बत ने हमें बर्बाद कर डाला। ज़ुबैदा खानम की आवाज़ में आप सुन रहे थे, फिल्म थी दिल में तू। समीन गज़लों के इस हल्के फुल्के प्रोग्राम में अगली गज़ल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, जो फिल्म सवेरा से लिया था। ये एस बी जॉन की आवाज़ है और मशहूर मारूफ गज़ल है इनकी, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना के महफ़िल जवां है हसी है।

0: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
1: एक पल की लापरवाही।
2: अंकल, मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Focus on the road. Wear your seatbelt. Don't use mobile phones while driving. Drive responsibly. घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
0: In the meantime, we need Simon's assistant to put the sliders down to shut me up. So I'm going to...

0: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
1: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
2: You're listening to Awaaz FM 99.8 MHz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
3: Two straight hours of sports nerds talking about every kind of sport imaginable. Start again.
4: The Behind the Mic Show.
5: Tune in every Monday
4: from 1 till 3.
6: Sporting waffle and absolute nonsense.
7: Talking about sport.
5: On Awaaz 99.8 FM.

0: की आवाज, आपका रेडियो, आपके शहर, आवाज एफएम।
1: मैं राज राम जी बोलता हूँ भैया। अली भैया, मेरी एक फरमाइश है, अगर हो सके तो बजा देना मेरे लिए, तुम रूठ के मत जाना। फिल्म है फागुन, रफी और आशा भोसले की आवाज में। थैंक यू।

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। Drive responsibly. Focus on the road.
2: From the South's premier city, this is Ours FM 99.8.

कहा गया है, लिखा हुआ है कि जोड़े आसमान में बनते हैं, हर इंसान का कहीं ना कहीं कोई ना कोई साथी इस दुनिया में है, और जब वो मिलते हैं तो इस कायनात में गीत गूंजते हैं।

0: कितना अच्छा है कि माँ हमारे लिए हर पल मौजूद है। शुक्रिया अदा करें मॉम का।
1: थैंक यू मॉम।
2: एक पल की लापरवाही।
3: अंकल मुझे तो बड़ी होके एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: From Wollstone to West End, from Millbrook to Marchwood, this is Hours FM.

0: our new jingle could just be us saying we need a new jingle.
1: We need a new jingle, yeah. What's better than that?
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaz FM on 99.8.
4: Thanks for tuning in to your local community radio station. We're one of 250 similar stations across the UK, each one serving a specific area every day of the year. And when you advertise your business on community radio, you're talking to people round here. And your money stays round here too, helping us to continue broadcasting. Find out more through the radio station website and keep listening to hear more of what makes us unique. Community radio, we're all about here.
5: From the heart of Southampton, reaching out to the community, this is Ours FM 99.8.

0: हुई नहीं सुबह और रोशनी हुई जरूर है, सोती जब दुनिया, यहां जागने का दस्तूर है। यहां चलता नहीं है कोई, बस भाग रहे सारे। और जो रुक गया उसका जीना फिजूल है।
1: ए, अवान दे, चल चल, चल।

साला ये शहर भी अजीब है, जन्नत से दूर और मन्नत के करीब है, मांगता मेहनत और चलता सिर्फ नसीब है। बिल्डिंग तो सब बहुत सॉलिड है यहाँ, पर रिश्तों में वो बात काम, आज इधर कल उधर, किसको मालूम कल गुजरी रात का।

ऐसा कौन है जिसको मेरी दगा नहीं? भूख से नहीं है मारा मारी, पर खुदगर्जी और लाचारी। पहले कौन आगे जाए, तेरी या मेरी गाड़ी? मुंबई मुंबई।

0: अगर कभी मेरी याद आए, गुरेज करती हुई हवा की लहरों पे हाथ रखना, मैं खुशबुओं में तुम्हें मिलूंगा, मुझे गुलाबों की पत्तियों में तलाश करना, मैं औस कतरों के आईनों में तुम्हें मिलूंगा। अगर सितारों में, औस कतरों में, खुशबुओं में ना पाओ मुझे, अपने कदमों में देख लेना, मैं गर्द होती मुसाफितों में तुम्हें
1: In
0: मिलूंगा।
1: Britain today, we all know that many, many people are trapped behind the wheel of a car. We ask which is the best way to reach them. Let's see the figures. Look at that, an enormous 14 million of them are listening to commercial radio. By contrast, only 300 are reading their newspapers whilst at the wheel, all of them cabbies. Overwhelming evidence that for the motorist, radio is the route that's right.
2: Radio, the medium that's now large.
3: And to find out how simple radio advertising is, call Ali now on 0776 514 5046 or you can email info@oursfm.co.uk.
4: एक पल की लापरवाही।
5: अंकल, मुझे तो बड़ी हो के एरोप्लेन उड़ाना था, पायलट बनना था, मुझे बड़ी हो के डॉक्टर बनना था, मैं तो सबसे बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था।

0: हम सॉरी बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: Hours FM 99.8. Hours FM.

0: Hello, Ali. Malcolm here in Portsmouth. Many thanks for your two phone calls. I am now tuned into AWAS, and it's showing clearly on my digital sign on my radio. Lovely to hear you back again. See you soon. Bye.
1: At South Hampshire College Group, we're creating better futures. Build real-world skills, gain valuable experience, and go further with industry expert teachers and outstanding facilities. Our full-time, part-time, and degree-level courses and apprenticeships will help you achieve your career goals. Across our Southampton, Eastleigh, and Fareham colleges, there's a course that's right for you. Discover more at our upcoming open events. For details, search South Hampshire College Group.
2: अपने कारोबार को कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाने के लिए एडवर्टाइज कीजिए आप अपने आवाज एफएम पर लाइव नशरियात के अलावा आवाज सुना जा रहा है इंटरनेट पर दुनिया भर में स्पॉन्सर कीजिए अजान या फिर रंगारंग पंजाबी उर्दू पश्तो या हिंदी प्रोग्राम्स आवाज रेडियो पर और पहुंचाइए दुनिया के कोने कोने में आप अपनी आवाज आवाज एफएम के साथ
3: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB, and on the internet. Awaz FM on 99.8.
4: दोस्तों मैं हूं सीमा सरगम मेरा प्रोग्राम आवाज कैरियोकी क्लब सुनना न भूलिए जो कि हर संडे शाम 6 बजे से 8 बजे तक आवाज एफएम पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है इस प्रोग्राम में आप ही की आवाज में गाए हुए कैरियोकी गीत पेश किए जाते हैं अपने गीत भेजने के लिए व्हाट्सएप का ये नंबर जरूर नोट कर लें नंबर है 07784691440 रिमेंबर आवाज कैरियोकी Club every Sunday 6 to 8 p.m.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: In touch with Hours FM on WhatsApp 07784 691 4.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: हेलो, माय नेम हीरा सिंह एंड I have my son birthday today and I for my son this song for Nusrat Fateh Ali Khan, Mahi Ve Tenu Yaad Kara, Mahi Ve Tenu Yaad Kara, Nusrat Fateh Ali Khan Sahab. Thank you.
4: Southampton's Community Radio, Hours FM.

0: I'm sorry, बच्चों, मुझसे गलती हो गई।
1: एक पल की लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, फोकस ऑन द रोड।
2: एक पल की लापरवाही आपकी लापरवाही किसी के ख्वाबों को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ सकती है। फोकस ऑन द रोड, वेयर योर सीट बेल्ट, डोंट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
3: Just because I'm a driver doesn't mean I can see you.
4: Just because you're at the speed limit doesn't mean you're not dangerous.
5: Just because you're in a rush doesn't mean you can ignore the crossing.
6: Just because you're driving doesn't take away my right of way.
5: Just crossing.
6: Just because you're driving doesn't take away my right of way.